हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल झूठ

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Don't want this whipped up. And Nigel Farage is completely wrong to use this to try and create division.
4: इस दौरान पुलिस दी प्रतिक्रिया दी इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट द्वारा जांच कीती जा रही है पर इस घटना बारे तुहाडे की विचार हन तुहानू की लगदा कि असल मुद्दा आखर की है अपने विचार जरूर सांझे करो एसएमएस करके 0439799767 0439799767 उत्ते एसपीएस न्यूज़ तों डेब गरारके दी है रिपोर्ट पंजाबी विच तुहाडे तक लेके आई हां मैं शायना कालरा
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS Audio.
11: अपनी वेवलेंथ नाल मेल खांदियां तरंगा सुनने लिए प्ले बटन दबाओ.
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
16: Far from the partisan politics.
11: फिलहाल ही सख्त तो वध भाषावां विच खबरां भी. तुहाडे मूड नाल मेल खांदा संगीत अते मनमोहक पॉडकास्ट भी जो तुहाडी उडीक कर रहे ने. SBS Audio ऐप डाउनलोड करो जां
10: sbs.com.au/audio.
17: प्यारे दोस्तों तुहाडा सारयां दा एक बार फिर निघा स्वागत इस कमर्शियल ब्रेक तो बाद तुसी जुड़े हो SBS पंजाबी दे नाल और मैं तुहाडा मेजबान पत्रस मसी अज 8 जून है और अज दा प्रोग्राम मेलबर्न स्टूडियो तो प्रसारित किया जा रहा है दोस्तों हफ्तावारी प्रोग्राम दे तहत अज असी तुहाडे लई लेके आए हां जी पंजाबी डायरी और पंजाब दे विच इस वक्त की हालात ने सियासी तौर ते समाजिक तौर ते की कुछ गतिविधियां ने पंजाब दे विच सारा वेरवा तुहाडे नाल सांझा करनगे साडे साथी परमजीत सिंह सोना आओ सुनदे हां रिपोर्ट
18: पंजाबी डायरी च आप जी नूं खुशामदीद अज दीआं हाईलाइट्स नीति आयोग दी मीटिंग विच रिपोर्ट कार्ड पेश करनगे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान सेहत सिक्ख्या सन्नत अते खेती सैक्टरां च कीते कामकाज नूं उभारेगी पंजाब सरकार नवें बने पंजाब भाजपा प्रधान केवल ढिल्लों ने अमित शाह नाल कीती मुलाकात घर वापसी दी चर्चा नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी बुक्कत वधी कांग्रेस हाईकमान पंजाब लीडरशिप दी नबज टोहण लगी इंडिया गठजोड़ दी नवीं दिल्ली विच इक अहम मीटिंग अज मेलबर्न निवासी सुनील शर्मा नू अमृतसर च उसदे सके भरा वालों कतल कीते जाण दा पुलिस वालों इंकशाफ ते पंजाब अंदर पारा मुड़ तों 45 डिग्री दे नेड़े पुज्जा पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अगले हफ्ते नीति आयोग दी मीटिंग विच अपने 4 सालां दे विकास कम्मां अते प्रोजेक्टां बारे रिपोर्ट कार्ड रखणगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ आउंदी 11 जून नू नवी दिल्ली च नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है जिस विच पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शमूलियत करनगे इस तजवीजित मीटिंग दे मद्देनज़र पंजाब सरकार ने तैयारी शुरू कर दिती है आप सरकार रंगला पंजाब दे बैनर हेठ खास तौर ते सिक्ख्या

हित, सनत अते खेती सैक्टर विच कीते कम्मां नूं उभारेगी। मुख्यमंत्री मीटिंग विच जिथे सरकार दी कारगुजारी दा खाका पेश करनगे, उत्थे पंजाब दे पख दे मसलियां नूं वी आयोग दे सन्मुख रखणगे। आगामी विधानसभा चोणां तों पहलां हो रही इस मीटिंग विच पंजाब दा सियासी रंग वी उगड़ेगा। विकसित भारत दे नारे हेठ होण वाली नीति आयोग दी इस मीटिंग च सूबियां च खास खेतरां विच होए कम्मां दी समीक्षा होएगी। आयोग सूबियां नूं स्वै निर्भर बनाउण उपर फोकस करेगा। केंद्र अते सूबा सरकारां दरम्यान होईयां मीटिंगां मगरों होई प्रगति दा जायजा वी लिया जाएगा। पंजाब सरकार नीति आयोग दी मीटिंग वास्ते एजेंडे अनुसार खाका तैयार कर रही है। सूत्रां अनुसार मुख्यमंत्री सिक्ख्या क्रांति दी गल रखणगे, जिस तहत स्कूलां दे बुनियादी ढांचे विच होए सुधार अते प्राइवेट स्कूलां तों सरकारी स्कूलां वल विद्यार्थियां दे पए मोड़े तों इलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस आदि दा उचेचा जिक्र कीता जाएगा। खेती सैक्टर विच होए कम्मां दी वी चर्चा कीती जाएगी। खास तौर ते नहरी पाणी दे प्रसंग विच होए कम्मां दी रिपोर्ट तैयार कीती जा रही है। जमीनी पाणी दी वरतों घटाउण अते फसलां दी रहिंद खूंद दे प्रबंधन सदका फसलां नूं अग लाउण दीआं घटनावां च आई कटौती दा वी जिक्र कीता जाएगा। सेहत खेतर खास करके आम आदमी क्लीनिकां दी कारगुजारी अते मुख्यमंत्री बीमा योजना नूं वी रिपोर्ट कार्ड दा हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार युद्ध नशियां विरुद्ध दी चर्चा वी छेड़ेगी। सूबा सरकार केंद्र वल्लों रोके गए देहाती विकास फंडां दी गल करन तों इलावा सूबे दे सनती विकास वास्ते पहाड़ी सूबियां दी तर्ज उपर पैकेज दी मंग वी करेगी। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री अते भाजपा दे सीनियर आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों लंघे दिनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करन तों बाद कल पंजाब भाजपा दे नव नियुक्त प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात कीती। इस दौरान केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय गृह मंत्री नूं उन्हां नूं सूबा प्रधान बनाउण वास्ते धन्नवाद वी कीता अते सूबे विच भाजपा नूं मजबूत करन दा भरोसा दवाया। इस दे नाल ही केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल सूबे विच लगातार विगड़ रही कानून व्यवस्था, नशियां दा मुद्दा अते होर सरहदी खेतर बारे वख-वख मुद्दयां उपर विचार चर्चा कीती। अमित शाह ने पंजाब दी सुरक्षा वास्ते हर पक्ष ते लोड़ींदा सहयोग देण दा भरोसा दवाया। इत्थे इह जिक्रयोग है कि पिछले दिन ही केवल ढिल्लों नूं पंजाब भाजपा दा प्रधान लाए जाण दे फैसले खिलाफ उजर जताउण मगरों बीते शनिचरवार नूं पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अते सेहत मंत्री जेपी नड्डा नाल मुलाकात कीती। इह मुलाकातां अजिहे मौके होईयां हन जदों कांग्रेस हाईकमान उन्हां दी घर वापसी बारे राजसी मंथन विच जुटी होई है। दसनयोग है कि घर वापसी की चर्चा नाल साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासी बुकत मुड़ तो वध गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि पंजाब के धरातल से कई सालों तो विचर नहीं रहे, पर उन्हां दी सियासी बुकत अजे बरकरार है। पंजाब चोणां हुण बहुतियां दूर नहीं हन, जिस करके भाजपा हाल की कड़ी अमरिंदर सिंह नूं हत्थों नहीं कढ़ना चाहती। उंज पिछले कुछ दिनों तो कांग्रेस विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुड़ तो घर वापसी के मामले उपर कुसर मुसर काफ़ी तेज़ है। हाईकमान ने जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह दी घर वापसी दी गल छेड़ी तां कई आगू इस नूं हजम नहीं कर सके। सियासी विश्लेषकां अनुसार इसे करके पंजाब कांग्रेस दी प्रधानगी च फेर बदल दा मामला पेंडिंग रख्या गया है। इधर पंजाब भाजपा दे नव नियुक्त प्रधान केवल सिंह ढिल्लों दे अहुदा संभालण तों बाद भाजपा विच छिड़िया अंदरूनी विवाद बाहर आउणा शुरू हो गया है। पंजाब भाजपा दे सूबा जनरल सकत्तर अते सूबा प्रधान दी दौड़ विच शामिल साबका आईएएस अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू ने अपने अहुदे तों इस्तीफा दे दिता। डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू ने 2022 विच अमृतसर दे पूर्बी विधानसभा हल्के तों भाजपा उम्मीदवार वजों चोण लड़ी सी। उन्हां दे मुकाबले विच उस वेले दे दो वड्डे आगू कांग्रेस वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू अते श्रोमणी अकाली दल वल्लों बिक्रम सिंह मजीठिया सन। सियासी खेतर विच प्रवेश करन तो पहलां उन्हां ने अपने प्रशासनिक अहुदे तों वी इस्तीफा दित्ता सी। भारत विच विरोधी धिरां दे इंडिया गठजोड़ दी अज होण वाली मीटिंग विच 23 सियासी पार्टियां शामिल होणगियां। बैठक दौरान गठजोड़ विच शामिल खेतरी भ्याड़ां टीएमसी अते डीएमके नूं हालिया असैम्बली चोणां विच मिली हार मगरों बने सियासी हालात दरम्यान भाजपा नाल मत्था लाउण अते इक दूजे नाल वखरेवियां नूं दूर करन वास्ते नवें सिरिओं रणनीति करन बारे भी चर्चा होएगी। कौमी राजधानी दिल्ली दे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विच रखी इस मीटिंग विच कांग्रेस वल्लों राहुल गांधी अते मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल आगू ममता बैनर्जी अते अभिषेक बैनर्जी, समाजवादी पार्टी दे मुखी अखिलेश यादव,
आरजेडी दे तेजस्वी यादव अते शिवसेना दे उद्धव ठाकुरे तो इलावा खब्बियां पार्टियां अते कुछ छोटियां पार्टियां दे आगू भी शामिल होंगे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस मुखी ममता बैनर्जी ने विरोधी धिर इंडिया दे गठजोड़ की मीटिंग तो एक दिन पहला आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नाल दिल्ली च मुलाकात की। उन्होंने दस्या कि दोवें नेतावां ने भविख बाबत चर्चा की। 66 साल मेलबर्न वासी सुनील शर्मा जो पेशे वजों गणित दे अध्यापक सन अते पिछले दिनी अपनी एक निजी जायदाद नूं वेचण दे मामले विच अपने जद्दी अस्थान अमृतसर आए हुए सन। इत्थे पिछले महीने उन्हां दे लापता हो जाण तों बाद हुण पुलिस ने दावा कीता है कि उन्हां नूं उन्हां दे भरा वल्लों कथित तौर ते कतल कर दिता गया अते उन्हां दी लाश नूं इक नहर विच सुट दिता गया। शनिचरवार नूं अमृतसर पुलिस ने सुनील शर्मा दे भरा सतीश शर्मा नूं गिरफ्तार करन तों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती। पुलिस ने दोष लाया कि सुनील शर्मा नूं उन्हां दे भरा सतीश शर्मा वल्लों किसी पीण वाली चीज़ विच नींद दीआं गोलियां मिला के दित्तीआं गईआं अते फिर बेसबॉल बैट नाल उन्हां दे सिर ते वार करके उन्हां नूं कतल कर दिता। अमृतसर दे SSP कमलप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च दस्या कि सतीश शर्मा की पत्नी अते पुत्तर ने इस कथित कतल विच कातल की मदद की अते तिन्ना ने मिल के लाश नूं एक नहर विच सुट दिता। लाश नूं बरामद करन वास्ते पुलिस की भाल जारी है। जानकारी अनुसार ऑस्ट्रेलिया का विदेश मामलों अते व्यापार विभाग इस कतल के मामले विच सुनील शर्मा के रिश्तेदारां की गिरफ्तारी तो जाणू है अते भारतीय अधिकारियों नाल लगातार संपर्क विच है। इधर पंजाब अते हरियाणा सने उत्तरी भारत विच गर्मी ने मुड़ तो जोर फड़ लिया है। पारा 45 डिग्री के नेड़े पहुँच गया है। पंजाब विच बठिंडा अते हरियाणा विच रोहतक सब तो गर्म रहे। मौसम विज्ञानियों ने अगले 3 दिनों तक दोवें राज्यों विच अत दी गर्मी पैण दी पेशीनगोई की है। इसी अज दी पंजाबी डायरी। थोड़ा दिन शुभ रवे। हुण इजाजत दिओ।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 8 जून 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे. आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुल इन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक हम साथ लेकर चलेंगे आपको खबरों, जानकारी, इंस्पायरिंग स्टोरीज और संगीत के एक खास सफर पर. उम्मीद कर रही हूँ आपका दिन बिल्कुल शानदार गुजर रहा होगा. चाहे आप सिडनी की सड़कों पर सफर कर रहे हों, मेलबर्न में काम से लौट रहे हों, पर्थ की शाम की चाय का आनंद ले रहे हों, या फिर भारत और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हमें सुन रहे हों, आप सभी का SBS हिंदी पर स्वागत है. आज के कार्यक्रम में कई अहम और दिलचस्प विषयों पर बातचीत करेंगे. क्या ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेसिडेंस के लिए कल्याणकारी लाभों के नियम बदल सकते हैं? हाल ही में विपक्षी नेता एंगस टेलर ने संकेत दिया है कि यदि गठबंधन सरकार सत्ता में आती है तो कुछ वेलफेयर बेनिफिट्स को नागरिकता से जोड़ा जा सकता है. प्रवासन, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनके बयान ने नई बहस को जन्म दिया है, तो इसी पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आएंगे. इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके समर्पण और सेवा को पूरे ऑस्ट्रेलिया ने सलाम किया है. किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2026 में भारतीय मूल की बिजेंदर दुग्गल को एजेड वेलफेयर क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उनके काम ने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है. उनसे हमारी खास बातचीत हुई है जो कि आज आपको सुनाऊंगी. और इसके अलावा सम्मानित व्यक्तित्वों की इस श्रृंखला में आगे आपको मिलवाऊंगी आपके मेलबर्न के सौरभ मिश्रा से, जिन्हें इस वर्ष ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से नवाजा गया है. समुदाय के लिए उनके योगदान और सेवा के अनुभवों को वो हमारे साथ SBS हिंदी पर साझा करेंगे. इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत से समाचार भी होंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और बातचीत बताती रहूंगी. लेकिन फिलहाल आपको आज का सवाल बता देती हूँ. तो आजकल मैं जब भी आती हूँ आपको गाने की एक धुन सुनाती हूँ और फिर आपसे पूछती हूँ कि ये कौन सा गाना है. मैंने देखा है कि आपको ये जो छोटा सा कॉन्टेस्ट है ये बहुत ही पसंद आता है, तो चलिए आज फिर से ये चीज़ करते हैं. लेकिन आज मैं आपके लिए एक नया गाना लेकर आई हूँ, बजा रही हूँ और आप मुझे सुनकर बताएं कि ये जो धुन है ये कौन से गाने की है. प्रस्तुत है 8 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से एक दुखद समाचार. पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर और विश्व प्रसिद्ध कैंसर शोधकर्ता प्रोफेसर रिचर्ड स्कॉलियर का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वे पिछले 3 सालों से एक आक्रामक ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे. अपने अंतिम पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी केटी और बच्चों का आभार व्यक्त किया तथा सरकारों से चिकित्सा अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने की अपील की. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रोफेसर स्कॉलियर ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपना शोध कार्य जारी रखा. वहीं ग्रीस में एक व्यक्ति को सिडनी में हुए 27 वर्ष पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार जेम्स डालामांगास नामक व्यक्ति को नियमित पुलिस जांच के दौरान हिरासत में लिया गया. माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के साथ लगभग 3 दशक पुरानी अंतर्राष्ट्रीय तलाश का अंत हो गया है. वहीं फिलीपींस से बड़ी खबर आ रही है. दक्षिणी फिलीपींस के मिंडनाओ आइलैंड के पास आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तटीय इलाके के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है. फिलीपींस के ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार सुनामी की लहरें 1 मीटर से अधिक ऊंची हो सकती हैं और कई घंटों तक जारी रह सकती हैं. आइए अब एक रुख करते हैं मध्य पूर्व का. ईरान ने इसराइल के खिलाफ कई चरणों में मिसाइल हमले किए हैं। ये कार्रवाई बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इसराइली हमले के जवाब में की गई है। इसराइल की सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया और किसी बड़े नुकसान की तत्काल सूचना नहीं है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इसराइल अपने हमले बढ़ाता है तो अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन और रूस के बीच सीधे वार्ता के प्रयास का समर्थन किया है। लंदन में हुई बैठक के बाद नेताओं ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की और कहा है कि मौजूदा युद्ध मोर्चे को शांति वार्ता का शुरुआती आधार बनाया जाना चाहिए। प्रस्तावित वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सीधी भागीदारी की बात कही गई है। आइए सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक सकारात्मक खबर। किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2026 में 900 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को देश के प्रति उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की समाज सेवी बिजिंदर दुगल को भी वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक एकता का उत्सव है। वहीं विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने डिच द विच नामक नए विज्ञापन अभियान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये एक गुप्त और अच्छी तरह वित्त पोषित राजनीतिक अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है जिसकी जांच की जानी चाहिए। बात करें भारत की तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3री सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बेहद प्रतिस्पर्धी बन गया है। 3री सीट के लिए भाजपा के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन आमने सामने हैं। 18 जून को होने वाले मतदान में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में 3री राज्यसभा सीट किसके खाते में जाएगी, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना था आज का न्यूज फ्लैश। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक धुन सुनाऊंगी और उसके बाद आपको मुझे बताना है 04397997667 पर कि ये गाना कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा।

0: तो जल्दी से अपने जवाब मुझे 04397997667 पर भेज दीजिए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम में अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाल ही में एंगस टेलर ने परमानेंट रेसिडेंस और वेलफेयर बेनिफिट स्कीम को लेकर क्या कहा है। तो हाल ही में विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने कहा कि यदि गठबंधन यानी कोएलिशन की सरकार बनती है तो स्थायी निवासियों यानी परमानेंट रेसिडेंस के लिए कल्याणकारी लाभों, जिन्हें हम वेलफेयर बेनिफिट्स भी कहते हैं, तक पहुंच सीमित की जाएगी। बहुसांस्कृतिक मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रवासन और हाउसिंग सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कल्याणकारी लाभों को सिटीजनशिप की स्थिति से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के तहत हेल्थ बेनिफिट्स सभी निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। जानिए इस अंश में कि लिबरल पार्टी नेता ने स्थायी प्रवासियों, नागरिकता और वेलफेयर लाभों को लेकर आखिर क्या कहा है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। हाल ही में विपक्षी नेता एंगस टेलर ने प्रस्ताव दिया है कि यदि कोएलिशन सरकार सत्ता में आती है तो कई वेलफेयर लाभ केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों तक सीमित कर दिए जाएंगे। इस नीति के तहत NDIS, जॉब सीकर, यूथ अलाउंस, फैमिली टैक्स बेनिफिट और अन्य सहित 17 कल्याणकारी योजनाओं तक गैर नागरिकों और कई स्थायी निवासियों की पहुंच को समाप्त कर दिया जाएगा। ये प्रस्ताव विवादास्पद माना जा रहा है क्योंकि इससे कई नए स्थायी प्रवासी प्रभावित हो सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2001 से लेकर 2021 के बीच 3 मिलियन से ज्यादा स्थायी प्रवासी ऑस्ट्रेलिया आए और यहीं बस गए। 2021 की जनगणना के अनुसार इनमें से लगभग 59% लोगों ने आगे चलकर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त कर ली। लेकिन विपक्षी नेता एंगस टेलर का कहना है कि कोएलिशन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुछ दिन पहले एंगस टेलर और लिबरल सेनेटर देव शर्मा के साथ हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SBS हिंदी ने उनसे पूछा कि जब परमानेंट रेजिडेंट भी लगभग उतना ही टैक्स देते हैं और इकोनॉमी में योगदान करते हैं तो उन्हें इन लाभों से क्यों बाहर रखा जाना चाहिए। इस पर उन्होंने जवाब दिया।
2: So a couple of things, and thank you for the question. The first thing I hear is that we need to communicate more and talk more and engage more with migrant communities, and I'm acutely conscious of this. I've got a very significant migrant community in my own electorate, and I think this is a priority for me, and it's one of the reasons why I'm doing this today, and we're going to keep doing it, and Dave has been very focused on that, so I think that's important. The second thing I'd say is... What I certainly hear from the community in my electorate, but also more broadly, is the importance of small business as a pathway to opportunity for someone arriving in the country. This is why I think the strength of small business is so crucial, and the importance of home ownership too. And these are things that we are very, very focused on. In terms of the welfare, the question you just asked, we firmly believe that a couple of things. That first of all, that welfare programs should be grandfathered for anyone who's already in the country, and we've made that very, very clear. We don't want to change anything for people who have already come to Australia and are already permanent migrants, and also those who have come on humanitarian programs. We can't, you know, it will often be difficult for someone who's come on a humanitarian program to find work as quickly as someone who's come on a skilled visa, who is obviously coming here to work. And so we recognise that difference. We would also make available, always, across the board, health programs, childcare programs, aged care programs, and so on. So there's no issue on any of those. They would all be provided. And I think health in particular is one where we should always offer people who come to our country access to health services. That's crucial. But we also think it's appropriate that someone who comes here, say on a skilled visa, that you get access to welfare programs over time. We have a very fast path to citizenship. It need only be 4 years. For someone to become a citizen, only three of which need to, well, only one of which needs to be permanent. So it's one of the fastest pathways to citizenship in the world. We do want people who come to Australia and want to stay in Australia to seriously consider becoming citizens. I think this is important. I do realise that there may be trade-offs involved in that. I understand that. But citizenship is really important. As people come to Australia and commit to Australia, we must commit back. And that fast pathway to citizenship is important. And I do think it is important that when someone wants to make their permanent home in Australia, they come here as a permanent migrant, that they seriously consider citizenship. And we're certainly encouraging that.
1: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंगस टेलर ने माइग्रेशन, सिटीजनशिप और घरों की कीमतों को लेकर कोलेशन की नीतियों का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की प्रवासन योजना ऐसी होनी चाहिए जो देश के घर बनाने की क्षमता और लंबे समय में आर्थिक अवसर पैदा करने की ताकत से मेल खाए। फिलहाल माइग्रेशन आज राजनीतिक बहस का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और परमानेंट रेजिडेंट कल्याणकारी नीतियों से जुड़ी चर्चा के केंद्र में लाए जा रहे हैं।
0: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे खबरें भारत से।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
5: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
4: Learn more at emory.edu.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone.

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। वक्त हो रहा है 5:16, और वैसे तो हमारा कोई भी कार्यक्रम आप मिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आज की शाम आप मेरे साथ ज़रा देरी से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप हमारा कोई भी कार्यक्रम या अंश SBS हिंदी की वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा SBS हिंदी जो है वो अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आ गया है, और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज बिल्कुल जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से आप तक खबरें दुनिया भर और ऑस्ट्रेलिया से पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको आज का सवाल बता देती हूँ। मैं एक धुन आपके सामने चलाने वाली हूँ और आपको सुन के मुझे इस गाने का नाम बताना है। नंबर है 04397997677। तो ध्यान से सुनिए।

0: तो जब तक आप अपने जवाब मुझे भेज रहे हैं, समय हो चला है कि हम जानें कि भारत में क्या कुछ चल रहा है हमारी इंडिया रिपोर्ट में।
1: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। सभी आकलनों को झुठलाते हुए केवल 22 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक मीम से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हैरानी की बात यह रही कि भारत सरकार ने CJP का एक्स अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बंद करने के बावजूद बिना देरी के शनिवार सुबह इस प्रदर्शन की इजाजत दे दी। लगभग 7 घंटे चले इस प्रदर्शन में देश के विभिन्न भागों से जेन जी युवा हजारों की संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। जेन जी के अलावा शिक्षाविद, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, सिटीजन जर्नलिस्ट, अभिभावक और आम नागरिक भी इस प्रदर्शन में आवाज उठाते दिखाई दिए। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ विश्वविख्यात क्लाइमेट चेंज कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और JNU स्टूडेंट्स यूनियन के पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस को विशेष तौर पर प्रदर्शनकारियों से सहानुभूति से पेश आने के निर्देश दिए गए थे। युवाओं ने एक सुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। CJP के मंच से श्री वांगचुक ने युवाओं से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के आगे बढ़कर और सुधारों पर भी शांतिपूर्ण आंदोलन करने को कहा।
2: और जहां आप एक तरफ इस्तीफा मांग रहे हैं, त्याग पत्र मांग रहे हैं, अच्छी बात है जिम्मेदारी मांगना, मगर जिम्मेदारी और तरीकों से भी निभानी चाहिए कि मैं कहूंगा जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी विद्यालयों में होने चाहिए।
1: सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि किसी मंत्री या उसके स्टाफ पर सीधे भ्रष्टाचार, रिश्वत या गलत काम का आरोप हो तो इस्तीफे की मांग जायज होती है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री पर कोई ऐसा सीधा आरोप नहीं है। वे जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस आंदोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ बताया।
3: कुछ लोग विदेश से विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा देते हैं। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे

0: बिहार का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला। डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
1: कुछ दक्षिण पंथी हिंदुत्ववादी संगठनों ने जंतर मंतर आ सीजेपी के आंदोलन में खलल डालने की कोशिश भी की, जिसे दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से रोक दिया। बहरहाल सीजेपी ने मोदी सरकार को आगाह किया है कि यदि श्री प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो वे 13 जून को अपनी मांग को लेकर फिर से बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ता लगातार कई राज्यों में पुलिस दमन का सामना करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस या कोई दूसरी विपक्षी पार्टी अभी तक सीजेपी के पक्ष में नहीं उतरी है और इसे इंटरनेट की सनसनी के तौर पर संशय से देख रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विवादित बयान, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस और परजीवियों से की थी, का असर अब विदेशों तक में दिखने लगा है। लंदन की बिरबेक यूनिवर्सिटी में 4 जून को अपने भाषण के दौरान जस्टिस सूर्यकांत को युवा छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। भाषण के दौरान सभागार में उपस्थित छात्रों ने सवाल किया कि भारत में असहमति के प्रति दुश्मनी, जो मुख्य न्यायाधीश की चर्चित टिप्पणियों में भी साफ झलकती है, क्यों बढ़ रही है। सभापति द्वारा छात्रों के सवालों को बीच ही में काट दिए जाने पर आयोजन को बिना सवाल जवाब के अचानक ही समाप्त करना पड़ा। यूनाइटेड किंगडम में स्थित भारतीय उच्चायोग ने छात्रों के इस व्यवहार को अमर्यादित बताया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट को देख मुश्किल विकल्पों का सामना करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी अब ज्यादा सतर्क हो गई है। बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। उन्होंने एल नीनो के प्रभाव से भारत में खाद्यान्न की कमी और पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण चेतावनी दी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरों के खर्चे बढ़ सकते हैं और इसका असर जल्द ही सीपीआई महंगाई दर पर दिखेगा। भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मजबूत करने के लिए उन्होंने विदेशी निवेशकों, एनआरआईज और इंडिविजुअल पर्संस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया यानी पीआरओआईज के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की।
2: फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर फार विच इज द फुली एक्सेसिबल रूट वी आर एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय इंक्लूडिंग ऑल न्यू इश्यूएंसेस ऑफ 15, 30 एंड 40 ईयर टेनर G-Secs। इन एडिशन लिमिट्स पर्टेनिंग टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटीज on FPI investment under the general route are being removed. All these measures together should help attract foreign capital for government borrowing. The limits for investment by NRIs and OCIs in equity instruments traded on the stock market without SEBI registration are being increased.
1: पश्चिम बंगाल और असम जैसे पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्यवाही तेज हो गई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से 2,860 लोगों की नागरिकता की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। भाजपा के पश्चिम बंगाल में सत्ता के आने के बाद से सैकड़ों कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी सीमाओं पर जमा हो रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक लगभग 400 बिना दस्तावेज वाले कथित बांग्लादेशी प्रवासियों को अपने डिटेंशन सेंटरों में हिरासत में लिया है। यह राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया का भी नतीजा है, जिससे सीमावर्ती राज्य में प्रवासियों के बीच घबराहट फैल गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार बांग्लादेश ने इस मामले पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और अब समाचार खेल जगत से। 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीत इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल राउंड में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हरा कुल 18 अंकों के साथ यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 7 बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने जीता है, मगर इस बार उन्हें प्रज्ञानानंदा से 2 बार हार का सामना करना पड़ा और वे 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो कुल 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फ्रांस के अली रजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
3: तो दोस्तों, ये आपने सुने समाचार भारत से, और वैसे तो यहाँ पर समय हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन सोच रही हूँ कि ब्रेक से पहले आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ। इसके अलावा अगर आप आज की शाम जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर, तो मुझे अपना संदेश ज़रूर भेजें और सुने ये प्यारा सा गाना।

तो दोस्तों मंडे की शाम है और लॉन्ग वीकेंड है, तो बताएं मुझे कि इस बार आपने लॉन्ग वीकेंड पे क्या क्या किया है। इस बार मैंने तो कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, लेकिन अपने प्लान्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। नंबर है 04397997677। आपके संदेशों का मुझे इंतज़ार है।

0: तो आप में से कई लोग तो ये गाना पहचान गए होंगे, लेकिन एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। जब ये फिल्म आई थी, काफ़ी लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन कभी कई सालों बाद अब ऐसा कहा जाता है दैट दिस फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, मतलब अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो बताएं मुझे कि ये गाना कौन सा है। नंबर है 04397997667। और अब मैं आपको मिलवाऊंगी मेलबर्न के सौरभ मिश्रा से। तो मेलबर्न के सौरभ को इस वर्ष किंग्स बर्थडे ऑनर्स में OAM से सम्मानित किया गया है, और इसी बात पे अनीता बरार से उन्होंने की खास बातचीत। आइए इस बातचीत से उनके काम के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो समुदाय की सेवा करते आ रहे हैं।
1: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। हर वर्ष किंग्स बर्थडे पर ऑस्ट्रेलियंस को समुदाय के लिए उनकी विशेष सेवाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार सम्मानित करती है, और बहुत गर्व की बात है कि इन सम्मानों की सूची में भारतीय समुदाय के लोगों का भी नाम रहता है। तो आइए आज मुलाकात करते हैं मेलबर्न स्थित सौरभ मिश्रा जी के साथ, जिन्हें कई ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से समुदाय की सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी OAM से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को पाने के बाद में सौरभ जी की पहली प्रतिक्रिया थी हैरानी। उनसे जानना चाहा कि वो किन संगठनों के साथ जुड़कर सक्रियता के साथ समुदाय की सेवा में लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया।
2: मैंने साइटेशन देखा इसका, लगभग जो मैंने सारा कुछ काम किया है और वो वॉलंटरी भी और नॉन वॉलंटरी, मतलब अपने जो बिजनेस में भी जो मैंने काम किया, तो सभी को जोड़ करके उन्होंने कुछ इसका हिसाब बनाया है। तो मैं अगर आपको वॉलंटरी का अपना जो काम बताऊं तो उसमें तीन चार चीजें काफी उजागर होती हैं। पहली है कि टाई नाम की एक संस्था है, TIE, और उसके जरिए मैं पिछले 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खास करके अर्ली स्टेज में एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी मैं मदद करता आया हूं, और मेरे जैसे और भी लोग टाई में जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हमें बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का, उसको बढ़ाने का तजुर्बा है। तो वही तजुर्बा हम जो लोग नए सिरे से बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके साथ हम साझा करते हैं, उनको हम उनकी मदद करते हैं, उनको हम अच्छे कनेक्शंस दिलवाते हैं जो जिन लोगों से हमारी जान पहचान है। हाँ। और इन दिनों हम लोग कुछ फंडिंग भी उनको दे पाते हैं, तो उसके तहत 30 से 40 लोग तो उसी के जरिए मेरे जुड़े ही होंगे। हाँ, पिछले 20 सालों में
1: जी बिल्कुल।
2: फिर एक दूसरी चीज है जो पैलिएटिव केयर में मेरा करीब 20 साल का और काम रहा है। तो पैलिएटिव केयर वो केयर है जो एंड ऑफ लाइफ में दिया जाता है
1: जी।
2: और उसमें यहाँ पर एक एजेंसी है जो पहले उन्होंने नर्सिंग केयर के से शुरू किया था, लेकिन फिर उन्होंने एक वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया। तो उसमें पहले ये था कि बस कोई जाए और जो क्लाइंट है उसके साथ बैठे और कुछ कर सके ताकि उनका कुछ दिल बहले, या फिर जो उनका जो उनकी जो केयरर है उनको कुछ रिस्पेक्ट मिले। और इन दिनों उसका एक और स्वरूप निकला है जो कि लोगों को अपनी आत्मकथा लिखने में मदद करने का। तो वो काम भी मैं पिछले 20 साल से करता आया हूँ, और हर हफ्ते मैं वेडनेसडे को मेरा टाइम मैंने एलोकेट किया हुआ है, तो जाता हूँ और ऐसे किसी परिवार में मैं बैठता हूँ और उस क्लाइंट के साथ, किसी के साथ 3 महीने, किसी के साथ 6 महीने गुजरते हैं। 20 साल में मुझे लगता है कि कुछ 25-30 परिवारों से मैं जुड़ा हूँ।
1: बहुत ही भावुक अनुभव होता होगा, और सबके साथ जुड़ाव बन जाना और फिर उनको अलविदा कह देना।
2: अच्छा जी, आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं कैसे ज्यादा, मतलब जो उसका पैथोस है उससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ा।
1: अच्छा।
2: लेकिन अभी हाल फिलहाल एक क्लाइंट था जो कि मेरी उम्र का था, मेरा हम उम्र था, और बहुत ही नेक बंदा, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान। और जैसे वो आपको याद होगा जो फिल्म थी ना आनंद, उसमें जो राजेश खन्ना का जो किरदार था, लगभग वैसा ही एक इंसान था ये। तो उसके गुजरने से मुझे जरूर लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए था। हर बार मैं किसी के साथ बैठता हूँ इस तरह से, और खास करके इस तरह से इंसान से मिल पाया, तो उसमें प्रेरणा ज्यादा मिलती है। फिर तीसरी चीज है जो कि जिसके बारे में आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है, आपने हमारी बात मदद भी की है, वो है मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सोसाइटी। तो इसे करीब 10 साल पहले मैंने और मेरे मित्र डॉक्टर मनीष अगस्कर और मेरे फादर, हम तीनों ने मिलकर के इसको एस्टेब्लिश किया था। और अब तो बहुत लोग जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छे
0: जी
2: लेवल पर वो काम चल रहा है,
0: हाँ
2: ग्रास रूट्स लेवल पर भी, मेलबर्न में भी और ऑस्ट्रेलिया भर में लोग काफी अब सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और साथ में हर महीने हम अब मेलबर्न में कोई ना कोई कार्यक्रम रख लेते हैं जिसमें कि या तो इंडिया से कोई अच्छा म्यूजिशियन आ रहा है या फिर हमारे लोकल म्यूजिशियंस काफी अच्छे हैं।
0: जी
2: और फिर साल में एक बार एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हम पिछले 6 साल से रख पा रहे हैं, जिसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म के जो सबसे दिग्गज कलाकार हैं वो आते हैं और 2 दिन का फेस्टिवल रहता
0: जी
2: है। उसमें बहुत आनंद आता है अंता जी।
1: जी और संगीत, संगीत तो सबका मन मोह लेता है ना। वो कहते हैं ना कि संगीत का जो प्रेमी वो किस्मत वाला होता है। तो ये सम्मान मिल जाने के बाद में क्या कोई बोझ महसूस होता
2: नहीं, बोझ
1: है?
2: तो नहीं, बहुत कृतज्ञ हूं मैं कि किसी ने मुझे इस लायक समझा कि इसके लिए नॉमिनेट
1: लेकिन अब
2: किया।
1: आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई ना।
2: हाँ, कहा तो जा सकता है।
1: जी
2: फिलहाल तो ये है कि मतलब चूंकि एक मैंने कहा ना कि एक तरह से एक शौक लगा कि ये कैसे हो गया, तो उस शौक से मैं अभी उभरा नहीं हूँ। तो अभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो पा रहा है। मुझे मालूम है सब लोग यही कहते हैं, मैं भी यही कहूंगा, थोड़ा किसा पिटा है, लेकिन पुरस्कारों के लिए तो कोई काम करता नहीं है, वो तो
1: जी
2: काम करने में जो आनंद है उसी के लिए काम किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी को कर पाऊं, उसी को करता रहूं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ।
1: कुछ सलाह देना चाहेंगे और लोगों को जो सुन रहे हैं?
2: मैं 2 चीजें कहूंगा अंता जी। एक तो ये कि मैं खास करके पैलेटिव केयर में देखता हूँ कि
1: जी
2: मैंने आपको कहा ना कि पैथोस से ज्यादा मुझे कभी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमेशा एक चीज का फर्क पड़ा है कि वो जो मैं कहूंगा डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रेटिट्यूड मिलता है फैमिली की तरफ से, वो मुझे तो हमेशा बहुत अटपटा लगता है कि वो इतना ज्यादा इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि कोई कुछ कर रहा है उनके लिए। हालांकि कोई क्या करता है अमिता जी, मतलब कि हफ्ते में 1-2 घंटे कोई किसी के साथ जाके बैठ गया, कुछ दिल बहला दिया कुछ। अब मैं ये जो बायोग्राफी का काम करता हूँ उसमें वो अपनी कहानी
1: जी
2: बता रहे हैं, मैं उसको लिख रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर उसी के करने से, उतने छोटे से चीज से ही अगर लोगों को इतनी मीनिंग मिल रही है, इतना उनको इतना वो ग्रेटिट्यूड प्रकट कर रहे हैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि फिर और लोग क्यों नहीं करते हैं इसको, इस काम को।
1: बिल्कुल
2: और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था जी कि देखिए, हम जो भारतीय समुदाय से जुड़े हुए हम सब हैं, जो
1: जी
2: आपके श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं हमारी बातें, मैं उनसे भी एक डायरेक्टली बात कहना चाहता हूँ कि हम जब भी, मैं देखता हूँ, मतलब ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हम जब भी कुछ वॉलंटियरिंग की बात सोचते हैं या इवन डोनेशन की बात सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा हमारी सोच भारत की तरफ जाती है, हमारे यहाँ के समुदाय की ओर जाती है। वो ठीक है, वो मैं समझता हूँ वो,
1: बिल्कुल
2: लेकिन ये जो देश है हमारा, ये भी हमारा ही देश है, और इसमें, और मुझे, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा देश है ये। यहाँ पे जो हम कर पाते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जो सेफ्टी है, कंफर्ट है, तो मेरी बहुत दिली गुजारिश है और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ का भी सोचें, यहाँ के जो मेन स्ट्रीम है उससे भी जुड़ने की बात सोचें।
1: जी
2: अब हम एज एन इंडियन कम्युनिटी, हम मेरे ख्याल से हम लोग सबसे सबसे बड़ी एथनिक कम्युनिटी बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया की,
1: जी
2: तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि हम हमारे हमारे ऊपर आती है कि हम मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से और जुड़े हैं।
1: सौरभ जी, मैं यही कहूंगी कि आपकी बातों ने बहुत प्रभावित किया है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, वॉलेंटियर कर रहे हैं और अपनी संस्थाओं के साथ जुड़कर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, आपकी बातें सुनकर हम सबका उत्तरदायित्व बढ़ा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, आपकी बातें भी प्रेरणादायक रहीं।
2: धन्यवाद अनिता जी, और आपने बहुत सहारा दिया है हमारा, हमारी विभिन्न संस्थाओं का भी, तो आपको भी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और सौरभ मिश्रा जी को SBS हिंदी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो अवार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अवार्ड है और ऑस्ट्रेलिया में उन सभी लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपने संदेश मुझ तक भेजते रहें, लेकिन एक संदेश आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने आपको एक धुन सुनाई थी और पूछा था कि ये गाना कौन सा है, इस पर मुझे कुछ सही जवाब आए हैं, लेकिन कुमार जी ने जो गेस किया है वो सही नहीं है। इन्होंने लिखा है कि ये जो ट्यून है ये शायद किसी फिल्म की है जिसका नाम है पड़ोसन बिकॉज ऑफ द ड्रम साउंड्स, लेकिन कह भी रहे हैं कि आई माइट बी रॉन्ग। तो ये जो आपका जवाब है ये गलत है। अब सही जवाब क्या है ये आप सभी को जल्द बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना आपको सुनाती हूँ। ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ आपको बता दूँ कि आपके जो संदेश हैं वो मेरे पास आते रहने चाहिए। नंबर है 04397997677।

0: तो दोस्तों, अगर आपने ये धुन पहचान ली है तो जल्दी से बताएं मुझे, नंबर है 0439799767। तब तक यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
6: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर। देखिए 7 दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
5: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें, ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनका सामाजिक जुड़ाव एक अहम मुद्दा है। इसी संदर्भ में किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2026 में बिजेंदर दुग्गल को एजेड वेलफेयर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। उनके अनुभवों को सराहने के लिए हम उनसे आज बातचीत करेंगे और इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आ रहे हैं नबील हसन।
7: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। द किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2026 में इस बार भी कई ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विजेताओं की इस सूची के साथ गवर्नर जनरल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ऑनर सिस्टम उन लोगों को पहचान देता है जो अपने समुदाय, वर्क प्लेसेस और समाज के लिए असाधारण योगदान देते हैं। इस ऑनर्स लिस्ट में एक खास नाम है बिजेंदर दुग्गल, जिन्हें एजेड वेलफेयर के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। कई वर्षों से बिजेंदर जी सीनियर सिटीजन्स, खासकर माइग्रेंट और साउथ एशियन कम्युनिटीज के बुजुर्गों की भलाई, सामाजिक जुड़ाव और उनके अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। आज SBS हिंदी पर हम उनसे उनके अनुभवों और ऑस्ट्रेलिया में सीनियर सिटीजन्स के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। बिजेंदर जी, SBS हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई।
8: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई फील वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि ये जो अवार्ड है उसके लिए हमें चुना गया है, एक दूसरे देश से आके और ब्राउन स्किन से और वुमेन होके, इससे ग्रेट ऑनर। तो इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इट्स बीन वेरी ग्रेटफुल टू ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी। और ये मेडल सिर्फ बिजेंदर दुग्गल का नहीं है, ये उन सब सीनियर का है जो अकेले हैं और उस हर एक उस वॉलंटियर का है जिन्होंने इतनी सेवा की है पर कभी उनका नाम रिकॉग्नाइज नहीं होता है, और हर परिवार का है जो अपने बुजुर्गों का साथ हमेशा देते हैं। मेरे को ये लगता है कि ये जो सम्मान है मेडल नहीं है, बल्कि और जिंदा रहने के लिए और सेवा करने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है।
7: आपने सीनियर सिटीजंस के लिए काफी काम किया है और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज पर भी काम हुआ है, न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों के लिए भी। इस सेंसिटिव एरिया में काम करते हुए आपका अनुभव कैसा रहा?
8: देखिए, जो वायलेंस है वो सिर्फ गरीब लोगों में नहीं होती, पढ़े लिखों से भी होती है, फिजिकल के बिना इमोशनल भी होती है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, ह्यूमिलेशन है, और जो जो कि लोग बहुत से लोग हमारे सहते हैं। तो ये सिर्फ औरतों में और या यंग लोगों में नहीं है, बुजुर्गों को भी होती है कि बहुत किस्म की, क्योंकि हमने एल्डर अब्यूज के लिए बहुत काम किया है, फोरम किए हैं, तो हम दो शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। बहुत सी महिलाएं हैं जो पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए दर्द सहती रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं कि एक डिवोर्स जो बेटी है एक डेड बेटी से बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस छोटी सी लाइन से बहुत कुछ आ जाता है। और इसमें ये जैसे मैंने कहा है, कुछ आदमी लोग भी कभी कभी सहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये यंग के लिए, किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी रेस में हो सकती है, किसी जेंडर में भी हो सकती है।
7: आपने माइग्रेंट बैकग्राउंड से आने वाले बुजुर्गों के साथ काफी करीबी से काम किया है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं, जैसे लोनलीनेस, आइसोलेशन या कल्चरल डिस्कनेक्ट?
8: सबसे ज्यादा जो है कि वो है, जिंदा रहने के लिए सिर्फ जो है एक दवा की जरूरत नहीं होती, बल्कि दुआ की भी और साथ की जरूरत होती है। बहुत से सीनियर जो है वो तन्हाई से रहते हैं, अकेले रहते हैं, एक छोटी सी फोन कॉल, एक छोटी सी बैठी, चाय का कप, या किसी ने आपका नाम लेके पूछ लिए आप कैसे हैं, तो इतना कहने से ही लोगों की दुनिया बदल जाती है। सीनियर्स हमने देखा है वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होते हैं और डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं। उन लोगों को जिंदगी में सबसे ज्यादा होता है वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने गली मोहल्ले को छोड़ के, घर को छोड़ के दूसरे देश में आते हैं, और आके जो बच्चे हैं वो अपने काम में उनको जाना पड़ता है, वो सारा दिन अकेले होते हैं और बहुत लॉस्ट फील करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है आइसोलेशन जो है वो बहुत बड़ा इशू है।
7: अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन और इंडियन कम्युनिटी काफी बढ़ रही है, आपके अनुभव में यहाँ के सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा किस तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है?
8: देखिए, सिर्फ सर्विसेज की जरूरत नहीं है, बिलोंगिंग की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है। उनको कल्चरली अप्रोप्रिएट प्रोग्राम चाहिए जिनमें वो अपनी बोली बोल सकें, अपने खाने को खा सकें, अपने लोगों से मिल सकें, उनसे शेयर कर सकें। अब मेंटल हेल्थ और लोनलीनेस जो है वो सिर्फ बात करने से नहीं होती है, वो होती है कि अपने दिल से जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक और डांस है, एंटरटेनमेंट नहीं, उससे वो पुरानी यादें कनेक्टेड होती हैं, उनसे अपनापन याद आता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग बैठे हुए बुजुर्ग सुनते हैं, पर एकदम वो पुराना गाना आता है तो गुनगुनाना शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं। ऐसे ही जो एक और एरिया जो है वो है डिजिटल लिटरेसी, वो भी बहुत जरूरी है। अगर इस जमाने में उनको अपने बच्चों से कनेक्ट रहना है और सर्विस से कनेक्ट रहना है, तो हमें अपने लोगों को डिजिटल लिटरेसी भी करानी पड़ेगी। और अभी हमें इस साल वो मीडिया लिटरेसी का प्रोजेक्ट शुरू किया है, स्कैम्स और ये फ्रॉड्स जो कितने चलते हैं, उनको कैसे पता चले कि हमारे जो लोग हैं व्हाट्सएप में मैसेज आता है तो फॉरवर्ड करते जाते हैं, अगर किसी झूठ को बहुत बार रिपीट किया जाए तो लगता है शायद उसमें कुछ सच होगा। तो उसके लिए उनको अवेयर करना, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो बुजुर्ग है उनको इसलिए नहीं पीछे छोड़ सकते कि वो उनके मुंह पे झूठी हैं या वो पुराने हो चुके हैं, उनकी जिंदगी में वही दिल है, वो धड़कता है जो प्यार के लिए, गाने के लिए और रिस्पेक्ट के लिए।
7: विजेंद्र जी, आपने म्यूजिक, डांस और कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए भी बुजुर्गों को एंगेज किया है, ये चीजें उनकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग में कैसे मदद करती हैं?
8: ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये थेरेपी है। जब कोई सीनियर, मैंने जैसे बताया, पुराना गाना सुनते हैं तो उनकी जिंदगी की बहुत सी यादें जो उनके साथ आ जाती हैं, और इसी से जो डांस से जो करने से वो बुजुर्ग जो है अपनापन महसूस करने लगते हैं, एक सेफ सी पोजीशन में बदल जाते हैं। ये कल्चरल के लिए म्यूजिक जो है लोनलीनेस के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डांस और लाफ्टर लोगों को सिर्फ फिजिकली एक्टिव ही नहीं रखता बल्कि इमोशनली भी जिंदा रखने का एक रास्ता देता है। तो ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं कि जो उनकी कभी एक्सप्रेशन देखो तो वो लगता है ऐसी जगह पे कुछ देर के लिए अपनी बीमारी, अपने दुख, अपने कंसर्न सब भूल गए हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा कुछ और हो सकता है।
7: एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि युवा इंडियन ऑस्ट्रेलियंस अपने बुजुर्गों के साथ और बेहतर कैसे जुड़ सकते हैं और उनकी ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं?
0: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपके खूब सारे संदेश मेरे पास आ रहे हैं और जो कि एक एक करके आपके लिए पढ़ दूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये गाना एंजॉय करें।

तो दोस्तों आपको बता दूंगी आज के सवाल का सही जवाब हमें दिया है सृष्टि खेमानी जी। और एक और संदेश मुझे आया था जो कि आपको बता देती हूँ संदीप जी की ओर से, जिन्होंने क्लाइड से ये संदेश हमें भेजा है। और जैसा कि आप गाना सुन ही रहे हैं, गाने का नाम है छमक छलो, मूवी है रावण। और इसी के साथ आप सभी के संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन भी लोगों ने आज मेरा कार्यक्रम सुना है, मुझे सराहा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी नई गानों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप सुनते रहें SBS हिंदी।

नहीं बस एक खराबी है, आदत से नहीं हम

0: Dancing far and style.
1: Slow down, boys.

The Bollywood Session on SBS South Asian.

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: राजा बजाना।

0: हमारे बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद। खाना खाके जाइएगा।
1: SBS साउथ एशियन।
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk.

0: हार के वो जा रहा है कोई शबगम गुजार। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।
1: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

वाली गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले, काम सारे गल कर ले मेरे यार। तू मेरी बाह फड़ ले, आंखें ये आ पढ़ ले, सीने से दिल कढ़ ले मेरे यार। किन्ना सोना लगदा है तू।

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: Today at 4 o'clock, it's SBS Punjabi on SBS South Asian, or listen anytime on the SBS Audio app.

मैं बाटू के तुझे भी कम ना रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे, but I want you to stay.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।